0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

लाइफ में हमेशा जमा और घटा नहीं होता, कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो जाता है। और दो लोगों का साथ अगर अच्छे से बना रहे तो फिर वो टीम इतना अच्छा काम करती है कि बस पूछिए मत। 1972 वो साल था जब पंचम गुलजार ने एक साथ काम करना शुरू किया। फिल्म का नाम था परिचय और ये भी एक इत्तेफाक है, यहीं से एक इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ, पंचम आशा गुलजार का इतिहास। ऐसे बेमिसाल गाने आगे बने जिनका कोई जोड़ नहीं, हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, एक्सपेरिमेंट किए। पंचम आशा गुलजार का जादू हम सबके दिल में बसा हुआ है।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: चले।
1: अब इस चलने चलाने से याद आया कि आप एक काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, वो ये है कि बसों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में डीटीसी यात्रियों को अपने सुझाव देने का चांस दे रहा है। इसके लिए डीटीसी ने अपने एक्स हैंडल समेत बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म के सवालों का उत्तर और सुझाव दोनों आप दे सकते हैं, है ना? अच्छा चांस। अब भाई, लाइफ तभी अच्छी लगती है जब दोनों हाथ में लड्डू हो, लेकिन अगर लड्डू ना हो तो भी अच्छी लगती है जब दोनों हाथ में आपके पास इतने प्यारे प्यारे गाने हो। यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: तो क्या आपने देखा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को? भारत सरकार द्वारा युवाओं को देश के टॉप 500 कंपनियों में व्यावहारिक जो उनका कार्य अनुभव है यानी कि प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना। तो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ी इसके लिए जो युवा लोग हैं वो आगे आएं और इस प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को फिर से देखें कि क्या है ये।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: वेलकम बैक। तो हम आपसे यही कहेंगे कि भाई देखिए अगर आपको मीठा खाना मना है तो चलेगा, लेकिन मीठा बोलने से परहेज बिल्कुल ना कीजिए। एक दिल है, एक रास्ता है, एक मन भी होता है, और एक मोबाइल है, एक रेडियो है, और एक मैं हूँ म्यूजिकल दिल्ली में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके साथ आपके पास जुड़े रहने की पूरी कोशिश में।

अब जब सपने की बात आई है तो फिर सच्ची सच्ची बताइएगा, कौन सा वाला सपना ज्यादा देखते हैं, प्यार वाला या फिर पैसे वाला? पैसे वाला सपना सच हो जाए तो लगता है कि प्यार भी मिल जाएगा, है ना? हैव अ गुड डे, बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय कीजिए, और ये मंडे आपके लिए है।

0: हुरमूज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हुरमूज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हुरमूज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Sarabjit Kaur. The United States and Iran has finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही

0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने शुरू और बर्मिंघम में एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। समाचार अब विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने का समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: इधर भारतीय शेयर बाजारों में भी आज जबरदस्त तेजी का रुख है। सेंसेक्स 1197 अंक की तेजी के साथ 76725.27 अंक पर खुला। निफ्टी भी 339.15 की बढ़त के साथ 23984.85 अंक पर खुला। विश्व नेताओं ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया है और इसे पश्चिम एशिया में स्थायित्व बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनयिक कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया। श्री गुतरश ने के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की भूमिका की सराहना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समझौते को राजनयिक उपलब्धि बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समझौता जल्दी लागू करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में निर्बाध नौवहन फिर शुरू करने की अपील की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने

0: भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में आज नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। पिछले दशक के दौरान हवाई अड्डा अवसंरचना विकास में 1,40,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIIF आज से शुरू हो गया। औपचारिक उद्घाटन समारोह शाम को मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित किया जाएगा, जबकि फिल्मों की स्क्रीनिंग सुबह से ही शुरू हो गई है।
3: गैर फीचर फिल्मों के बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक फिल्म महोत्सव मिफ का उद्घाटन कॉर्डल बार्कर द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फिल्म गुड लक टू यू ऑल, अरविंद बेलार्मिनो और कायला डैनियल रोमेरो द्वारा निर्देशित लघु कथा फिल्म अगापितो तथा सारा डोसा द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइम एंड वाटर के प्रदर्शन के साथ होगा। प्रख्यात फिल्म निर्माता डेविड एटनबरो को सेंटेनरी ट्रिब्यूट के अंतर्गत उनकी दो फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। 19वें मिफ में 10 मास्टर क्लास और 5 ओपन फोरम चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष के संस्करण में 2 नई क्यूरेटेड श्रेणियां, मराठी फिल्म्स और इकोस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट भी शामिल की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ के रोमांचक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू और बर्मिंगम के एस्बेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। आपके नाम है, आपके गाने हैं जो आपने हमें भेजे हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। ये वाला गाना भी आप ही ने रिक्वेस्ट किया है, तभी तो हम लेकर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ दिल का मेल बॉक्स में आपके लिए।

0: यही तो हम भी कहते हैं कि भूलने की तो जरूरत ही नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और fmgoldairdelhi@gmail.com ये वो मेल आईडी है जिसपे आप हमें अपनी चॉइस बता सकते हैं कौन सा गाना है, और अपने शहर के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए तो और अच्छा लगेगा, है ना। ये है होली चौक, उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने हमें ना पता है आपको दो तीन नहीं पूरे पांच ऑप्शन दिए हैं फिल्म और फिल्मों के गाने, तो उनका एक गाना है हमारे पास बस अब भी आएगा। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू, इन्होंने भी कहा है कि भाई हमारी जो चॉइस है वो जरूर प्ले कीजिएगा। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, ये सब हैं इस वक्त कान लगाए अपनी बारी के इंतजार में, इनका गाना है हमारे पास। इसके अलावा चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा, आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने चॉइस के लिए, हम लेकर के आ रहे हैं ये।
1: तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।
2: और ये है दिल का मेल बॉक्स और आप हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, तहे दिल से शुक्रिया करते हुए और हम भी आपका शुक्रिया करते हैं और आपका हम ये स्वागत भी करते हैं कि भाई नए नए लोग हमारे साथ शामिल हों और अपनी चॉइस बताएं।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
7: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
8: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
7: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई

0: संपर्क डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: दिल का मेल बॉक्स है ये आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। बार बार आपके मैसेज हमारे पास आते हैं, हमें अच्छा लगता है। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार, कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, प्रोग्राम के सभी गीत हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, यही तो हम चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तारीफ है और तारीफ को हम स्वागत से ना लें ऐसा कैसे हो सकता है ना। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान है, सलमान है, इरफान है, इसरार है और नरगिस खातून भी है।

whatever.

दिल का मेल बॉक्स है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अच्छा लगता है, अपनी चॉइस का सॉन्ग अच्छा लगता है या फिर आपको अपना नाम अच्छा लगता है? अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आपको मेरा नाम भी अच्छा लगता है तो भी चलेगा। ये है दिल का मेल बॉक्स, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और ये है नाम जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। और हमें नमस्कार भेजा है जोहार कहते हुए कि एक गीत जो हमें बेहद पसंद है, जरूर जरूर सुनवाइए। आपको पसंद है और हमें भी पसंद है तो फिर हम सुनवा कैसे नहीं सकते हैं, तो जरूर सुनवाएंगे। और जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल हैं ये, साथ में बहुत सारे और लोग हैं और मैं भी हूँ इस गाने के साथ। तेरा वादा, हाय तेरा वादा जो पूरा कर दिया।

और वादा पूरा होने के बाद जो नाम है मोहम्मद सईद अब्बासी और उनके पूरे परिवार का, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भाई हम भी ये कहते हैं कि हमेशा विश करते रहिए, देते रहिए जितना देते बने। थैंक यू वेरी मच मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, और गुड मॉर्निंग कहते हैं हमें महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़। कहते हैं कि भाई हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपने जो हमारा गाना प्ले किया रोटी कपड़ा और मकान का, सबसे पहले उसके लिए हम कहना चाहते हैं शुक्रिया। तो भाई आपका भी शुक्रिया। गांव और डाकघर नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, कोई भी गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे

0: मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. The agreement calls for the U.S. and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability.

पहाड़ों की गोदी में चुप सा एक सपना, बादलों ने जैसे ओढ़ा हो कोई अपना गहना, झील के किनारे हवाओं की सरगम, लवासा है ये जहां ठहर जाता है हर भागता हुआ मौसम। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल की।

0: देखिए जनाब, जब भी आपको घूमने का मन करे तो उसको कभी भी ये न कहें, रहने दो। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। और जब भी घूमने का मन करे घूम लीजिए, तो फिर ये है लवासा की राह। पुणे से निकलती है एक मुसाफिर सी चाह, पहाड़ों ने खोली लवासा की राह, घाटियों में गूंजते हैं हवा के गीत, हर मोड़ पे लगता है कि कोई मिल जाएगा आज जरूर। पुणे के पास है ये लवासा, बहुत ही डिफरेंट सा लेकिन अपना सा लगता है, क्योंकि इंसानों ने इसे बड़े प्यार से बनाया है। यहाँ की जब झील देखेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि झील ने चुपके से आपको आईना दिखाया है, बादलों ने पर्वत को गले लगाया है। सड़कें कहती हैं कि भागती दुनिया को छोड़ दो, बस कुछ पल लवासा में जी लो।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप खो गए तो अचानक से आप जाग जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई हाँ, हम इस तस्वीर में खो गए जिसका नाम है लवासा। लवासा के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक जगह नहीं है बल्कि थके हुए दिलों की एक मीठी सी पनाह है, जहाँ पे हवा भी मुस्कुराती है और मुस्कुरा के यही कहती है कि दो पल बस यहीं ठहर जाओ। पुणे से लवासा की दूरी लगभग 65 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतनी किलोमीटर की है, जिसे आप बड़े आराम से गाड़ी से जा सकते हैं और वहाँ पे आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में एक प्लान सिटी है, जाके देखिएगा और उसके बाद फिर हमें बताइएगा। और जब आप जाएंगे ना तो फिर रास्ते में पड़ने वाले बड़े शानदार घाट आपको नज़र आएंगे और उन नज़ारों के लिए गाड़ी से जाना सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब जहां आपका मन करे आपने गाड़ी रोकी और अपनी अच्छी सी फोटोग्राफ्स ली और आगे बढ़ गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, पता है आपको, कैमरे में नहीं कैद कर सकते, उनके लिए हमारी आँखें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आँखों से जो हमने देखा वो दिल में उतर जाता है और उसके बाद हम कभी भी उस जगह को नहीं भूलते हैं। यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और तस्वीर में आज हम आपको तस्वीर दिखा

रहे हैं लवासा की, जो है महाराष्ट्र में। वहां पे आप जाएंगे तो आपको लेक साइड प्रोमिनेंट मिलेगा, वारास गांव झील मिलेगी जिसके किनारे आप घूमिए, बड़े सुंदर सुंदर से कैफे हैं, बैठिए और एक कप गर्म कॉफी का हो आपके पास तो फिर यकीन मानिए, अगर आपके सामने वाला चुप भी होना तो भी आपको लगेगा कि शायद कुछ बातें हो रही हैं। यही होता है जब हम अपनी जगह से कहीं दूर जाते हैं, क्योंकि दूरियां सिर्फ दूरियां नहीं होती, दूरियां नजदीकियां बढ़ाती हैं। वेलकम है आपका लवासा में।

0: ये तो जब आप लवासा पहुंचेंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ भाई ये हमने बड़ा अच्छा किया। तो वहाँ पे आपको पैदल चलिए, वाटर स्पोर्ट्स में अगर आपकी दिलचस्पी है तो फिर आप कीजिए। आप झील में काइकिंग कर सकते हैं, जेट स्कीइंग कर सकते हैं, और उसके अलावा जो यहाँ का सूर्यास्त है वो नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। और जब जाएंगे ना रास्ते में, तो आपको रास्ते में पड़ने वाला बांध मिलेगा जिसको कहते हैं टेमघर बांध, जो बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बैम्बू साहिब बांस के अनोखे शिल्प उत्पाद देखने की एक जगह है, वो देखिए। और एक नज़र में अगर आपने इटली घूमी है, इटली का एक शहर है पोर्टोफिनो, तो लवासा वैसा ही लगता है। इटली के पोर्टोफिनो शहर की तर्ज पे बसाया गया भारत का महाराष्ट्र में जो ये लवासा है, एक नज़र में आपको लगेगा कि कहीं आप इटली तो नहीं आ गए। ये जगह घाटों और खूबसूरत नज़ारों से घिरी हुई है, दिन हो या फिर रात हो, हर वक्त आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसके लिए आप कहेंगे वाह, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे न शोर है, न शहरों की थकान है, सिर्फ और सिर्फ हवाओं में सुकून है। और अगर आपने यहाँ की खामोशी पढ़ ली, तो फिर हर सफ़र में आप शायद लवासा ही ढूंढेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई चलो एक बार फिर से हम वहीं चलते हैं। और जब भी घूमने का प्लान आप बनाएं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपना रिसर्च करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे कि बस ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ घूमने जाइए, और कई बार कुछ भी नहीं करने का जो आनंद है, उस आनंद को महसूस कीजिए। क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कभी अपने आप से बातें करते हैं, कभी हमारा दिल बातें करता है, कभी हमारा दिमाग कुछ कहता है। कुछ पल सिर्फ और सिर्फ समय के साथ बहिए, लवासा उन्हीं में से एक जगह है, और आपको वो यही कहेगा कि भाई रुक गए, अच्छा किया। यह है तस्वीर लवासा की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।
1: देखो मेरा दिल धड़कता है,
2: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल

0: ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नादान दिल आपका घूमना चाहता है, इसीलिए हम हर बार तस्वीर लेके आते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे और बताते हैं एक शहर के बारे में। तो आज तस्वीर में जो है उसका नाम है लवासा। सबसे अच्छा समय है यहाँ पे जाने का जुलाई से सितंबर।

यानी कि मानसून के समय में जब हरे भरे पहाड़ों और झरनों से पूरा का पूरा इलाका ढक जाता है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो फिर फोटोग्राफी तो बनती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए भाई इतना सुंदर सब कुछ है तो उसको हम कैद कर लें। झील के किनारे रंगीन इमारतें आप देख पाएंगे, घाट और पहाड़ी सड़कें। मानसून में अगर आप जाते हैं तो सुबह और शाम को धुंध और बादलों वाला नज़ारा होगा, उसके साथ ही शांत, बिल्कुल शांत ऐसा कुछ आपको फील होगा। कई सारे अनसुलझे से सवाल हैं जो शायद हल हो जाएं, क्योंकि कई बार जब हम अपने आप को समय देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत का कोई शहर होता तो शायद उसका नाम हम लवासा रखते, जहां तुम हो मैं हूं और ये फिजा है, बस दिल कहता है ठहर जा। लेकिन कई बार हम सिर्फ अकेले होते हैं और ये सवाल हमारे पास होते हैं जिनके जवाब हमें शायद मिल जाते हैं।

0: तो इस परेशानी का एक ही हल है और वो है घूमना। अगर मैं आपसे कहूँ कि लवासा आप क्यों जाएं, तो फिर हमारे पास बहुत सारे उसके जवाब होने चाहिए। तो लवासा आप जाइए अगर आपको नेचर अच्छा लगता है। बड़ी चक्कर वाली घुमावदार सड़कें हैं, पहाड़ है, मानसून की हरियाली है। आप लवासा जाइए अगर आप रोमांटिक ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं। आप तब भी जा सकते हैं जब वीकेंड ब्रेक लेना हो। अगर शहर के शोर से एक दो दिन का शांत ब्रेक चाहिए, तो फिर ये आपके लिए एक बड़ी ही प्यारी सी जगह हो सकती है। ये सब कुछ मिलेगा आपको महाराष्ट्र में पुणे के पास, लवासा जो है ना वहाँ पे।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: तो फिर हमने आपको बता दी बहुत सारी वजह लवासा जाने के लिए। न कोई शोर है, न शहरों की थकान है, हवाओं में सुकून है। खामोशी अगर आपने पढ़ ली, तो फिर हर सफर में आप ढूंढेंगे इसी शहर को जिसका नाम है लवासा। लवासा आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, अगर आप जाते हैं, और बताएंगे कि हाँ भाई ये एक ऐसी प्यारी सी जगह है। अगर आप नहीं गए हैं तो फिर हो सकता है कि आप हमें थैंक्स बोलें और यही कहें कि भाई वाह क्या जगह बताई है आपने। तो हो के आइए और हमें मैसेज कीजिए। मैसेज में बताइए कि कौन कौन सी जगह थी जो आपने अच्छे से देखी, कौन कौन सी बातें थी जो आपको अच्छी लगी, या फिर आप कह सकते हैं हाँ सेम टू सेम है, मतलब हमने जो कहा वो सब कुछ आपने वहाँ पे फील किया। तो यूँ ही नहीं कहते कि लवासा तुम सिर्फ एक जगह नहीं हो, बल्कि थके दिलों की मीठी सी पनाह हो, जहाँ हवा भी मुस्कुरा के कहती है कि आओ घूम जाओ।

हम सब बहुत अच्छा मौसम की चाह तो रखते हैं और यही कहते हैं कि हाय मौसम बड़ा अच्छा हो जाए तो क्या बात है, लेकिन मौसम मांगे पर उसके साथ साथ नेचर के साथ जुड़िए। नेचर के साथ जुड़ के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लवासा वो जगह है जहां पे आपको उस नेचर के साथ जुड़ने का एक अच्छा सा चांस मिलेगा। तस्वीर लवासा की आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। हम तो हर बार की तरह आपको यही कहेंगे हैप्पी जर्नी, जाइए घूम के आइए और बहुत रिच होकर के वापस हमें बताइए क्या है और क्या लेके क्या सोच के गए थे। इसी के साथ इंदु पांडे सेज बाय बाय, फिर से मिलने के लिए और अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाके

0: बंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will

वो उसकी असल रौनक आवाजों से होती है। रसोई में होती चहल पहल, किसी के हंसने की आवाज, बच्चों की शरारतें, बड़ों की सीख और दिन भर के अनुभवों को साझा करती छोटी छोटी बातें, यही तो हैं वो धागे जो एक घर को घर बनाते हैं। इन्हीं आवाजों के बीच यादें बनती हैं, रिश्ते गहराते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी श्रुति बुरी और आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमसे जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी, और दोपहर के 12:10 से 1 बजे तक के इन 50 मिनटों में हम आपके साथ रहेंगे। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में हों, सफ़र में हों या दिन भर की व्यस्तताओं के बीच कुछ पल अपने लिए निकाल पाए हों, हम चाहेंगे कि ये साथ आपके दिन का एक सुख हिस्सा बने। आपकी राय, आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें लिख सकते हैं fmgoldga@gmail.com पर। तो आइए इस दोपहर को थोड़ा और आत्मीय, थोड़ा और रोचक बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का घर आंगन कार्यक्रम। वक्त फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

दोस्तों आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और टाल भी दी है। कबीर दास जी ने 500 साल पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी जो कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यही है कबीर की चेतावनी। आज के जमाने में तो टालना और भी आसान हो गया है, कई बहाने हैं और हमारे सपने, हमारे रिश्ते, हमारे जरूरी काम सब कल पर टंगे रह जाते हैं। कबीर का जवाब सिर्फ एक शब्द है और वो है अब। पूरा काम नहीं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बस शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। तो आज इस शो के बाद एक काम जो आप टालते आ रहे हैं वो कर डालिए, हमें मेल भेजिए और हमें बिना देर किए बताइए, और हम भी आपको बिना टाले एक प्यारा सा गीत सुनवाई देते हैं।

आशा भोसले को अभी आप वक्त फिल्म में सुन रहे थे। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम अक्सर घर की चार दीवारी में छुपा देते हैं, जिस पर बात करना जरूरी है लेकिन हम बात ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि वो हाथ जिसने आपको पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ को सहारे की जरूरत है। आज 15 जून है और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस दिन को इसलिए मान्यता दी क्योंकि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी थी। अब सवाल उठता है कि दुर्व्यवहार होता क्यों है? दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट नहीं होता, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कई रूपों में होता है। किसी बुजुर्ग माँ को घर के कोने में बिठा देना, उसकी बात न सुनना, ये भी दुर्व्यवहार है। बुजुर्ग पिता की पेंशन पर कब्जा कर लेना, ये भी दुर्व्यवहार है। उन्हें बोझ समझना, उनकी दवाइयां न देना, उन्हें अकेलेपन में

छोड़ देना, ये सब उसी के रूप हैं। और सबसे दुखद बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का शिकार होता है, और अधिकतर मामलों में ये दुर्व्यवहार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का कोई अपना ही होता है। 50% बुजुर्ग किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इनमें से अधिकांश इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, बेटे की बदनामी होगी। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है। वो बुजुर्ग जो अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567 शुरू की है, जो पूरी तरह मुफ्त और गोपनीय है। हेल्पलाइन एक बार फिर नोट कर लीजिए, 14567। तो दोस्तों, इस दिन का संदेश बहुत सीधा है। अपने घर के बुजुर्ग को देखिए, सुनिए, समझिए, उनकी थकी हुई आंखों में झांकिए, शायद वो कुछ कहना चाहते हों जो आपने आज तक नहीं सुना। जिस पेड़ की छांव में आप पले बड़े हैं, उस पेड़ को अब आपकी देखभाल चाहिए। आज के दिन बस एक काम कीजिए, अपने घर के बुजुर्ग के पास जाइए, उनका हाथ थामिए, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, और सच में इस बार उनकी सुनिए, क्योंकि जो आदर आज हम उन्हें दे रहे हैं वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी सीखती है। ख्याल रखिए अपना भी और अपने बुजुर्गों का भी।

दूरियां फिल्म में अभी आप भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौड़वाल को सुन रहे थे। श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसी विरासत की बात करना चाहती हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के भागदौड़ भरे जमाने में पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। सुबह की पहली किरण, खुली हवा और बस कुछ पलों की शांति, यही तो है योग का असली स्वागत। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। जब हम हर सुबह 20 मिनट भी प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक रिपोर्ट बताती है कि नियमित योग से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आती है। और सबसे बड़ी बात यह कि योग हमें खुद से मिलवाता है, उस शांत कोने से जो हमारे भीतर है, लेकिन शोर और तनाव में दब गया है। यदि आप योग प्रशिक्षक हैं तो आप योग से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं, लेकिन योग का काम सिर्फ चटाई तक सीमित नहीं है, ये समाज को भी बदलता है। जब एक इंसान भीतर से शांत होता है तो वह घर में प्रेम से बोलता है, दफ्तर में धैर्य रखता है और समाज में सहयोग की भावना लेकर चलता है। सोचिए, अगर एक मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर सुबह पार्क में योग करें तो न सिर्फ सेहत बनेगी बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज स्कूलों, जेलों, अस्पतालों और कॉरपोरेट दफ्तरों तक में योग अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बनाता है। तो दोस्तों, बस एक संकल्प लीजिए, कल से नहीं, आज से

से 5 मिनट का ही सही या 25 मिनट का ही सही, बस शुरुआत कीजिए योग से, क्योंकि योग कोई धर्म नहीं, कोई फैशन नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से सुंदर बनाती है। जैसा हमारे ऋषियों ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो श्रोताओं, क्या है योग करने के सरल नियम, कैसे किया जा सकता है सरलता से योग, आइए जानते हैं योग प्रशिक्षक देविका से। इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

0: घर आंगन के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। चैनल है आपका अपना आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और कार्यक्रम वही जाना पहचाना घर आंगन, जिसमें होती है घर की बातें और घर से जुड़े कई मुद्दों की बातें। तो अगर हम कहें कि आप अपने घर में खुशियां समेटना चाहते हैं, बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे जो जरूरी है वो है स्वस्थ रहना। और अगर हम स्वास्थ्य की बातें करें तो बहुत जो जरूरी चीज है वो है व्यायाम करना। तो चाहे वो जिम में जाके हो, चाहे बाहर दौड़ भाग के हो, लेकिन एक जो स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है योग का सहारा लेना, योग से जुड़ना। तो योग का अर्थ ही है जुड़ना। जब आपका मन प्राण आत्मा एकाकार होते हैं तो होता है योग। तो योग के बारे में और जानने के लिए और योग द्वारा हम किस प्रकार अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को, जो कि योग की अध्यापिका हैं, योग सिखाती हैं और काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। देविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हरिओम सभी को, मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है, मैं योग शिक्षक हूँ, साथ ही साथ एक योगा विद्यार्थी भी हूँ। क्योंकि योग ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कुछ सर्टिफिकेट्स में समेट सकते हैं या कुछ हिस्सों में समेट कर पूरा सीख सकते हैं, हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है योग, इतनी बड़ी चीज है उसको सीखने और समझने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि योग है क्या। योग एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, योग को आप एक ऐसा मार्ग कह सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी पूरी जिंदगी चलना सीख सकते। सुबह उठने से लेके आपके रात में सोने तक की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, पूरे दिन की आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपके शरीर का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति को समझिए कि वो आपके शरीर से कैसे जुड़ा है, योगा से उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। योगा इज टू बियॉन्ड देन एक्सरसाइज। योगा में आपका मन, आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी संस्कृति, आपका नेचर, सब कुछ आता है।
0: यानी कि पूरा एक जो जीवन जीने की शैली है, जो हमारा कर्म करने का कौशल है, मैं ये कहूँ कि ये जीवन यापन कैसे करना चाहिए, ये जो हमें सिखाता है वो है योग जी। क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन और जो घर की जो धुरी होती है तो देविका जी वो सबसे पहले होती है घर की महिला, है ना। तो उसका स्वास्थ्य और उसका मन बिल्कुल सही रहना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्यों ना उसी के बारे में बात की जाए। तो हम देखते हैं कि जो आजकल की महिलाएं हैं, चाहे वो घर में काम कर रही हो चाहे बाहर काम कर रही हो, उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि वो काम से थोड़ा सा अपने आप को कैसे हटा पाए कि वो वापस योग से जुड़े, या अपने स्वास्थ्य को वो थोड़ा सा देखभाल में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप क्या कहेंगी, कैसा होना चाहिए उनका एक लाइफस्टाइल, वो कैसे समय निकालें अपने लिए और योग से जुड़े ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे।
1: आपका शरीर सही है तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपना अच्छे से काम अपने ऑफिस में कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मैम टाइम नहीं होता, 90%
0: समय कैसे निकाले।
1: राइट, समय की परेशानी सबसे ज्यादा होती है वुमेन्स के साथ, इफ दे आर वर्किंग और इफ दे आर नॉट वर्किंग। घर में भी बहुत काम होता है, स्टिल वो गिना नहीं।

0: नहीं जाता बट उसमें बहुत काम होता है।
1: सोने के टाइम पे आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा निकाल सकते हैं।
2: पर ऐसे नहीं कहा जाता देविका जी कि सोते हुए, थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है ये सुनते कि खाना खाने के बाद कैसे व्यायाम करें हम।
1: बिल्कुल, सोने के बाद टाइम निकालने से मतलब ये है कि उस टाइम आप व्यायाम तो नहीं करेंगे, लेकिन सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज योगा की है, प्राणायाम का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट योग निद्रा का है, जिसको करने के बाद आपकी पूरे दिन की थकान उस आधे घंटे में मिट जाएगी।
2: हाँ, क्योंकि निद्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो नींद तो औरतों की शायद ही पूरी होती है, मुझे लगता है औरतें क्या किसी भी घर में अगर हम बात करें, आजकल बच्चे भी देर देर जाग कर काम कर रहे होते हैं, तो ये नींद की कमी तो सभी जगह है। पर ये अच्छी बात बता रही है, इसके बारे में और बताएं।
1: तो पूरे दिन का अगर आपका दिनचर्या ऐसे है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट सोने से पहले आप 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो वो पूरे दिन की थकान मिटाने वाली नींद आपको मिल जाएगी। सुबह आप एकदम रिफ्रेश होके उठेंगे।
2: तो ये प्राणायाम कौन सा करना चाहिए?
1: उसके लिए आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में सब अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। प्रॉपर प्रतिक्रिया के साथ उसको नासाग्र मुद्रा के साथ आप कर सकते हैं। 10-15 रेपिटेशन आप उसके करेंगे, लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ।
2: अच्छा,
1: आपने कभी देखा होगा पार्क में कई बार लोग ऐसे करते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं एंड दे आर कीप प्रैक्टिसिंग नासाग्र मुद्रा। प्राणायाम का सबसे बड़ा एक ही रीजन है, वो प्राणायाम आपके शरीर बेनिफिशियल होगा जब आपकी अवेयरनेस उसके साथ होगी,
2: यानी कि पूरा जुड़ाव होना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर की वो श्वास कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, आपको A to Z एक्टिविटी आपकी बॉडी की फील होनी चाहिए। आप किस तरह की सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग प्राणायाम, आप जब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं तो राइट से आप इनहेल कर रहे हैं या उल्टा छोड़ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं।
2: यानी ध्यान से तो प्राणायाम करें। और खाना खाने के कितने घंटे बाद हम कर सकते हैं?
1: कोशिश कीजिए आप आधे घंटे से एक घंटे का डिफरेंस तो रखिए, अगर बिल्कुल नहीं रख पाते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे का तो रखिए, 20-25 मिनट का डिफरेंस रख के फिर आप प्राणायाम तो कर सकते हैं। व्यायाम करने के लिए अगर आपने पूरा खाना खाया है, आपका अपने
2: वैसे तो कहते हैं खाना पचने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर हम व्यायाम की अगर
1: पूरा खाना लिया है तो फिर आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप रखना चाहिए। पर हाँ, आपने सिर्फ डिनर किया है,
2: हल्का खाना खाया है,
1: अगेन कहते हैं कि डिनर में कम खाना चाहिए, तो डिनर आप का डिपेंड करता है। बहुत फैमिलीज अब ऐसी हैं कि पूरे दिन का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एंड में ही रात में ही सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, तब वो उल्टा हेवी खाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप ऐसी कंडीशन में हैं, तो पहले आप अपने दिनचर्या को सुधारिए, पहले आप अपना डाइट को आप मेंटेन कीजिए, फिर आप धीरे धीरे अपने व्यायाम को भी शिफ्ट कर सकते हैं।
2: तो अगर हम ये मानते हैं कि उसने 7-8 बजे खाना खा लिया, तो 1.5-2 घंटे बाद अगर वो चाहें तो रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 जो आप बता रही हैं प्राणायाम और योग निंद्रा, मैं चाह रही थी कि उसके बारे में अगर आप बताएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ लग रहा है।
1: इवन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। सही तरीके से सोने का तरीका समझ सकते हैं कि आपकी अवेयरनेस आपके सोते टाइम भी आपके साथ हो, उसे आप कच्ची नींद भी नहीं कहेंगे कि जैसे किसी ने भी एकदम से आपको टच किया या आपको आवाज लगाई तो आप झटके से उठ गए। नहीं, अवेयरनेस से मेरा कहने का मतलब था सोते समय आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, आप अपने मेंटल थॉट्स पर ध्यान दीजिए, किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं रखना है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है।
2: कई बार ऐसा होता है ना, नींद आती है लेकिन हम सवेरे जो है वो ताजापन महसूस नहीं करते, हमें लगता है कि बड़ा रात को बहुत से सपने आए, हम कसमसाते रहे, परेशान रहे, ढंग से नींद नहीं आई, अभी भी वो तनाव लेकर उठ रहे हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रही हैं कि नींद हो पर भरपूर हो।
1: बिल्कुल, कहते हैं पूरे दिन में एक बार सोचिए कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पर उसको सोच के वहीं छोड़ दीजिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छी और शांत नींद आए, हैप्पीली सोए। तो उसके लिए आप 5 मिनट भी अगर आप प्राणायाम करके सोते हैं, फिर आप लेटने के बाद शवासन में लेटकर फोन नहीं चलाना है, तो उससे आपको बहुत शांत और अच्छी नींद 5 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि उनको नींद बहुत देर में आती है, वो नहीं होगा, आपको टाइम से अच्छी नींद आएगी तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे।
2: जी, और जब हम ताजगी की बात करते हैं तो और मन शांत की बात करते हैं तो संगीत भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है सुनना। तो क्यों ना योग की तो बातें करेंगे आगे, लेकिन चलते चलते एक गीत सुन लेते हैं यहाँ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मधुबन

0: अभी हम बात कर रहे थे जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए. आपने बताया कि योग निद्रा और बातचीत की, कि इवन हम सोने से पहले भी चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद. इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं. देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद.

श्रोताओं, अभी आप योग प्रशिक्षक देविका से बातचीत सुन रहे थे। रश्मि कुकरेती जी बातचीत कर रही थी इनसे, योग के बारे में सरल बातें, सरल नियम आप जान रहे थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कि जो आपके घर की चार दीवारी के भीतर हर वक्त चल रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकती। जी हाँ, वो आपके घर का वाईफाई है। आज के दौर में वाईफाई सिर्फ इंटरनेट चलाने का ज़रिया नहीं, बल्कि इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है, आपकी तस्वीरें जुड़ी हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है और आपकी निजी जानकारियां भी इससे जुड़ी हैं। भारत में साइबर क्राइम के मामले हर साल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अधिकतर साइबर हमले असुरक्षित होम नेटवर्क के ज़रिए होते हैं, यानी आपके घर में जो वाईफाई लगा है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर के वाईफाई को सुरक्षित कैसे बनाएं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है पासवर्ड। दोस्तों, अगर आपके राउटर का पासवर्ड अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है और आपका नाम है या आपकी जन्मतिथि है, तो समझ लीजिए आपका दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड रखिए जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर्स हों। दूसरी बात, अपने राउटर की सेटिंग में जाकर नेटवर्क का नाम यानी SSID बदल दीजिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम हैकर्स को आसानी से बता देता है कि किस कंपनी का राउटर है और उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तीसरी बात, अपने राउटर में VPA3 या WPA2 एनक्रिप्शन ज़रूर चालू रखिए, क्योंकि ये आपके डेटा

वो एक सुरक्षा कवच देता है। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी उपायों की। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्हें आपका मुख्य वाईफाई पासवर्ड देने की बजाय आप राउटर में गेस्ट नेटवर्क यानी अतिथि नेटवर्क चालू कीजिए। ये सुविधा लगभग आजकल हर आधुनिक राउटर में होती ही है और इससे आपका मुख्य नेटवर्क जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हर 3 महीने या 6 महीने में अपने वाईफाई का पासवर्ड बदलने की आदत डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि अपने राउटर का फर्मवेयर यानी उसका सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि कंपनियां इन अपडेट में सुरक्षा की कमियां दूर करती हैं। तो दोस्तों, घर का वाईफाई सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना घर का दरवाज़ा बंद रखना। डिजिटल ज़माने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी निजी जानकारियां हैं और उनकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। इस बात को समझिए। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को साइबर खतरों से बचा सकती है। तो संजो रखिए अपने डिजिटल घर को।

और श्रोताओं, अब समय है आपकी कुछ मेल्स पढ़ने का। एक मेल अभी हमारे पास आई है, उग्रसेन यादव जी ने लिखी है नई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि आपको मेरा दिल से सप्रेम नमस्कार। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक तरह से एक ज्ञान की किताब हैं, और आज की जेनरेशन चाहे तो आधे से ज़्यादा जीवन जीने की कला उनसे जान सकती है, अपने घर में अपने बुजुर्गों से। जीवन आसान हो जाएगा अगर इनकी बातों और इनके दिल की बताए हुए गुरों पर गौर किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसके साथ ही हमें एक मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का। एक मेल हमको लिखा है गौरी शंकर जी ने, और ये लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेल हमें राजू अग्रवाल जी ने लिखा है, ये भी

बताए हुए गुरों पर गौर किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसके साथ ही हमें एक मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का। एक मेल हमको लिखा है गौरी शंकर जी ने, और ये लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेल हमें राजू अग्रवाल जी ने लिखा है, ये भी बुज़ुर्गों की बात पर लिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने बताया था कि बुज़ुर्गों से दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस है। तो इन्होंने लिखा है कि जो बुज़ुर्गों के लिए अगर कुछ बच्चे करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बुज़ुर्गों के घर में मार्बल न लगाएं, क्योंकि इससे फिसलने का डर रहता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। तो प्रोग्राम तो हमेशा अच्छा होता ही है, बस ये एक प्रार्थना है जो हमारी आप सब तक सुनवा दें। और एक हमें गौरी शंकर जी ने एक मेल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब घर की जिम्मेदारियां बड़े ही निभाते हैं तो कामयाबी भी मिलती है, और इसीलिए बच्चों को बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा। और अब समय समाप्ति का है, तो श्रुतिपुरी को आज का घर आंगन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 당근.
1: 아스티트와 아프게 역대트와 세주라. 아프가 갈 앙근.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इस

0: में हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
0: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्हें कहा जाता था मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी, यानी उस दौर में उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की चर्चा हर तरफ थी। और सोने पे सुहागा ये दोस्तों कि उनकी आवाज भी बहुत ही प्यारी थी। तो गाना सुनिए और अंदाजा लगाइए कि किन की बातें करने वाली हूं मैं आज।

मन तो मेरा भी अंगड़ाई लेता है जब भी मैं ये गाने सुनती हूँ। मुझे ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी गाने आज के बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि एकदम अलग ही दुनिया में आज आपको लेकर जाने वाली हूँ मैं। दोस्तों, ये गाना आपने सुना सुरैया की आवाज़ में। संगीतकार थे नौशाद और फिल्म का नाम था अनमोल घड़ी। जी हाँ दोस्तों, सुरैया मशहूर थी और कितनी ज़्यादा मशहूर थी इस बात का अंदाज़ा आप इस घटना से लगा सकते हैं। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े फैन थे उनके जालंधर से। वो बारात लेकर उनके घर पहुंच गए और मुंह दिखाई में 2 लाख रुपए के गहने भी लेकर आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में 2 लाख रुपए के गहनों की क्या कीमत रही होगी, क्या मतलब जलवा रहा होगा सुरैया का। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि सुरैया के घर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसा दीवाना आ ही जाता था जो उनसे शादी की ख्वाहिश रखता था। सुरैया से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको हैं बतानी, लेकिन उससे पहले गाना, कहीं ना जाना।

प्यार तो किसी को भी हो जाएगा इनकी खूबसूरत आवाज को सुनने के बाद। दोस्तों, सुरैया की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना शमा फिल्म से, जिसे संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। आज हम सुरैया की बातें कर रहे हैं, शायद कुछ बातें आप जानते हों, शायद कुछ न भी जानते हों। दोस्तों, सुरैया का जन्म 15 जून 1925 में हुआ था। उनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख, फिल्मों में उन्हें सुरैया के नाम से जाना गया। दोस्तों, सुरैया 1 साल की थी जब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्हें 2 ऐसे दोस्त मिले जो हिंदी सिनेमा के आइकन रहे। एक थे राज कपूर और दूसरे थे संगीतकार मदन मोहन। सुरैया के ये जो बचपन के दोस्त थे राज कपूर और मदन मोहन, ये सभी के सभी यानी कि सुरैया के साथ ये बचपन में आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाया करते थे। यही वो मंच था जहां से सुरैया को भी रास्ता मिला हिंदी फिल्मों में गाने का।

0: दिल लगी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, सुरैया और शाम की आवाज में संगीतकार थे नौशाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें हो रही हैं सुरैया की।

दर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में। और दोस्तों, आज सुरैया के बारे में हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, शायद आप जानते हों, शायद आप न भी जानते हों। सुरैया के एक्टिंग करियर की अगर हम बात करें तो एक्टिंग करियर की शुरुआत 1936 में ही हो गई थी। उन्होंने जद्दन बाई की फिल्म मैडम फैशन में बाल कलाकार के तौर पर पहली बार काम किया था, लेकिन रोल काफी छोटा था तो कुछ खास पहचान उन्हें मिल नहीं पाई। सुरैया के एक्टिंग करियर को आगे ले जाने में उनके मामा एम जहूर का खासा योगदान रहा। वो एक मशहूर विलेन थे अपने जमाने के, और उन दिनों फिल्मकार नानू भाई वकील की एक फिल्म ताज महल में काम भी कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एम जहूर सुरैया को लेकर फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं और फिर सुरैया को मिलवाते हैं नानू भाई से। अब नानू भाई सुरैया की खूबसूरती और मासूमियत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तुरंत उन्हें मुमताज महल के किरदार के लिए चुन लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सुरैया को अपना पहला लीड रोल मिला था।

प्यार की जीत फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में। इस गाने को म्यूजिक दिया था हुसन लाल भगत राम ने। दोस्तों गायकी की अगर बात करें तो गायकी में सुरैया को पहला मौका संगीतकार नौ

0: रुस्तम सोहराब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कमर जलालाबादी ने और आवाज दी है सुरैया ने, ये आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, मिलते हैं आपसे और बातें करेंगे सुरैया के बारे में।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
6: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
7: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से

0: सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप कलाकार बेमिसाल में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुरैया की। दोस्तों, सुरैया ने अपनी ज्यादातर फिल्मों के गीत खुद ही गाए हैं और ये कमाल ही था कि उनकी आवाज की जितनी तारीफ हुआ करती थी, उनकी एक्टिंग की भी उतनी ही तारीफें सुनने को मिला करती थी। हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसी दूसरी अभिनेत्री रही हो जिन्हें अभिनय और गायन दोनों में बराबर प्रसिद्धि मिली थी। सुरैया सुपरस्टार कही जाती थी और कई नामों से उन्हें पुकारा जाता था, जैसे कि मल्लिकाए हुस्न और मल्लिकाए अदाकारी। जमाने में ऐसा कोई भी संगीतकार नहीं था जिसकी ख्वाहिश ना हो उनके साथ गाने गाने की। तो बड़े से बड़े संगीतकार के साथ उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए और बड़े से बड़े अभिनेता के साथ उनकी फिल्में आईं।

राजपूत फिल्म का ये गीत आपने सुना सुरैया की आवाज में. और दोस्तों अब दिल थाम लीजिए. जी हाँ, एक बहुत ही खास गीत, एक बहुत ही खास यूं कहिए गजल मैं आपको सुनाने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें करते हैं. दोस्तों अपने संपूर्ण करियर में सुरैया ने करीब 70 फिल्मों में काम किया. उनकी कुछ फिल्में क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे कि बड़ी बहन, अनमोल घड़ी, प्यार की जीत, रुस्तम सोहराब, परवाना और मिर्जा गालिब. जो लोग पहले से सुरैया को सुनते आ रहे हैं वो इस फिल्म का नाम सुनते ही उनके दिल में धक धक शुरू हो गई होगी कि हाँ भाई, मिर्जा गालिब तो उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म रही है, उनके करियर में माइलस्टोन मानी जाती है. दोस्तों पूरे देश में उनके जो मिर्जा गालिब वाला किरदार था उसे बेहद तारीफें मिली थी. बड़ी बड़ी हस्तियों

उनकी तारीफ की थी। साल 1940 से 1950 तक लगभग हर दूसरा गीत सुरैये की आवाज में सुना जाने लगा था। जी हाँ, उनकी आवाज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी मिर्जा गालिब के बाद। तो चलो मिर्जा गालिब की ये गजल सुनते हैं।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की दिनांक 15 और दिवस है सोमवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री हेमंता स्वर्गिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री ए के दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लवसंग तपतन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वंगमू। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसार

कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री हेमंता स्वर्गिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री ए के दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लवसंग तप्तन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वंगमू। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

मीडियम एप के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मिड न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर आप सुन सकेंगे दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's Wholesale Price Index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी

0: जारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान

0: का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और

0: और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आइए सुनते हैं शिव भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोता भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत शिव भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक पेशकश कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के ठीक 3 बजे हैं और अप्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लेते हैं संगम लिंगी और ओतोकी मूली की आवाजों में चंद ईदु मिश्मी आधुनिक नगमी। तो आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: शोधों में पान ले रहे थे संगम लिंगी और ओतोकी मोली के सुरों में चंद ईदू मिशमी आधुनिक नकमी। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। मेरी बात कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के 5th सेमेस्टर की मिस नीलम दर्जी से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनना विषय पर यह संदेश।
1: मैं नीलम दर्जी दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय की 5वीं सत्र की छात्रा आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम मेरी बात में अपने बात रखने का अवसर पाकर अपना हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय पर बात करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बनना। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी जीवन यात्रा की पूरी जिम्मेदारी को स्वयं ग्रहण करना, अपने निर्णय स्वयं लेना और अपने सपनों को अपनी निष्ठा और परिश्रम से साकार करना। जब हम किसी कार्य को अपने प्रयास से पूरा करते हैं तो उससे हमारे मन में एक गहरा गर्व उत्पन्न होता है, हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई साधन या वस्तु नहीं, यहाँ तक कि कोई अनुदान भी नहीं, या तो अपने आप को पहचानने की कला है, या तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें सुधारने को संकल्प लेते हैं और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करते हैं। मनुष्य के जीवन में हार और विफलता स्वयं एक शिक्षक की तरह होती है। हर विफलता हमें एक नई दिशा, नई दृष्टि और नया साहस देती है। इसलिए यह स्मरण रखिए, विफलता अंत नहीं, नई आराम का संकेत होती है। जीवन के रास्ते हमेशा सरल नहीं होते, कभी संकट आते हैं, कभी बाधाएं होती है, कभी मन में संदेह उत्पन्न होती है, लेकिन जो व्यक्ति हृदय में आत्मविश्वास रखता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य से कर लेता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति का चरित्र बुद्धिवा होता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, सुझावों या टिप्पणियों से परिवर्तित नहीं होता, वह अपने मर्मा की आवाज सुनता है और अपनी यात्रा को स्वयं निरंतित करता है। युवा वर्ग के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। युवा अवस्था ही सपनों को रूप देने का समय होती है। इस दौर में यह आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति को समझें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करें। कई बार लोगों की टिप्पणियां, समझ की अपेक्षाएं या अपने ही मन के संदेह हमें रोकने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वह प्रत्येक पर्वत को भी पार कर सकता है। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्ति

0: किसी भी परिस्थिति में शांत, स्थिर और दृढ़ता से बाहर होता है। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसका संकल्प मजबूत। अंत में मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ, अपने अंतर मन की शांति को पहचानिए, उसे पोषित करें और अपने जीवन को उज्जवल, प्रभावशाली और सफल बनाइए। आप सभी का धन्यवाद।
1: श्रोता भी आपने सुना दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के फिफ्थ सेमेस्टर के मिस नीलम दर्जी से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनना विषय पर दिए गए संदेश। श्रोता इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:34 हुए हैं और अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा, आइए आनंद लेते हैं फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बल से शिल्पा राव की आवाज में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य के है तथा संगीत सलीम सुलेमान का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं वीर जरा फम से। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत के गीतकार है जावेद अख्तर तथा संगीतकार है मदन मोहन।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं ज्योति नूरेन की आवाज में फिल्म टाइगर जिंदा है से। इरशाद कमल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल और शेखर ने।

इस योद्धा ने अपने सुना फिल्म टाइगर जिंदा है से ज्योति नूरेन की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार थे इरशाद कामिल तथा संगीतकार थे विशाल और शेखर। श्रोता इस नगमे के साथ ही महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी पर समाप्त हुआ।

मेरी वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। शुद्ध समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा आयानत लेते हैं फिल्म तू झूठी में मकर से, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के युगलबाजों में। इस गीत के गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार है प्रीतम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं फिल्म जुग जुग जियो से। कनी सेठ और कविता सेठ की युगल आवाजों में इस गीत के गीतकार है ट्रेडिशनल और संगीतकार कनीश सेठ।

विश्वतो भी अपने आनंद लिया अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की युगल आवाजों में फर्म टू स्टेट से ही खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शेफाली अल्वेरिस की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

बेनीडेल और शिमगरी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में श्रोता भी आपने सुना हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे कुमार तथा संगीत इस गीत के गीतकार थे कुमार और अहमद अनीस और संगीतकार थे शरीफ तोशी और जावेद अहमद। श्रोता से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी नगमे जिसका प्रसारण आकाशवाणी के तवंग केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम गीत मंजरी को आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की युगल आवाजों में फिल्म फनीकांत से। इरशाद कमिल के लिखे गीत को संगीत से संवारा है अमित द्विवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाजों में फिल्म दीदी प्यार देसी। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है विपिन पाटवा ने।

श्रोतों, कार्यक्रम का अंतिम पेशकश को हम लिया है फिल्म ट्यूबलाइट से। आतिफ असलम की आवाज में गीत अमिताभ भट्टाचार्य के है तथा संगीत प्रीतम का।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में लीजिए पेश है उस्ताद इमराद खान से राग मधुवंती पर सरोद वादन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

शो तो मैं सुन रही थी उस्ताद इमरान खान से राग मधुवंती पर सरोद वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी संध्या 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:50

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ बातचीत। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज फ्रांस के एवन शहर में। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रोमी ताकी और डोमिनिक कारोपा को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियों के तहत अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के बालीजान और सागाली में ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भारत में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की श्री रॉबर्ट फित्सो से उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत तथा स्लोवाकिया की यात्रा को संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रासिलवा पहुंचने से पहले श्री मोदी को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रोमी तक और डोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोनों कलाकारों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि रोमी तक को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं डोमिन कारबाक को अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR 2026 के तैयारियों के तहत पापुमपारे जिले के बालीजान और सागाली में बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO तथा BLO सुपरवाइजर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालीजान में आयोजित प्रशिक्षण में 14 तोयमुख विधानसभा क्षेत्र के BLO तथा BLO सुपरवाइजर द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर बालीजान ADC सह 14 तोयमुख विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO ताकार रावा ने सभी पात्र मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा उचित क्षेत्रीय सत्यापन के माध्यम से अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया। वही 15 सागाली विधानसभा क्षेत्र के BLO के लिए सागाली में BC प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष में विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन तक जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता किया गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जल मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 6 से 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का आशंका व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र में अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ के सक्रिय हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, शियोमी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों और सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। ब्रिटेन में 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो बेडो के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। सूर्य ने आज मेक्सिको के मोंटेरिना स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। सूर्य ने दूसरे हाफ में प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की है। मिचेल स्टार्बक ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा है कि

0: tamangshu di pressure chike rangani me, pressure high su chi, tomi gyor di pressure high su, man mazayo chuki, ta pressure high su chi, kidney ka kyundu me. Ichik pressure high oya rang su na chuk, melong ay kyun, melong matong shong, hypertensive retinopathy, nye utkaya complication tiro. Then your thing atang CT tondo nye na stroke patient nye dume, stroke nye nga ye, stroke na ka nairo dum. Latpane nga pressure high gay ya, latpane nga kra de lang gay, tsa di man gay ya, kra gay dume, ichik stroke lang gay, pe lai shong lang gay. Bak di pressure your high tomri your se na, kra di garbi shong lang gay, ichik garbi chit kra chit, latpane nga de lang gay na, gumi mo shong chik, pe lai shong lang gay dume. Ichik utepule nga yang gay na pressure chiki, ngadang ngadang ya, kyun your di rogu chiki, na si nye dume, pressure chik control ya ni gu su khadu yim nye.
1: Yes. The doctor said hypertension so see num, utsu kaya rodo inum, each quarter to nung, doctor said that, nung Christmoto did up in our patient domo, not put a inanime honumbur, which had my doctor nanime honumbur, hypertension yoso, the high blood pressure, sukida, matang, mafti kangati at the honumbur, yabuta utsu, tanga gungatra, people nasha rationova, shunba nasha nova, pisho nasha utanga to susha rationo inum.
0: The oyanina, the patient ye kanji naka nei ka sinyu go nomme nada che nga ta kya gar ket ka ni na primary ni na primary hypertension ni dum da primary hypertension che ka ro du ni da nga ta ta phama gyu ya ya pakti che nga da phama na che rene onu na che rai chok nu o ye ti chong lang gai dumme pakti nga ta africa ka shok mina che the race ni na bishe mang sho di ton dumme pakti da mang sho di desh no si ti ni na the lifestyle che nata sadan khedan ki kyun rasu ji ki shel mangkhrao nata weight mangkhrao ji ki obesity ji ki ut ki kyun rasu ji bp high lang shong lang gai du me tan utse ga nata ba te mi bi se na un kho ko nega ro pule pressure high gai du me pregnancy induced hypertension ye ut pressure high su go ji un ke sar pule check up ma ya na shuk bi die pressure high shong o ro du me ta un na she mo du ni na o ya mo du me secondary hypertension ni wa ta da je primary hypertension essential hypertension ata sadang kheda nya rik ni na ta ichik gyumjan chi gi ro du me ta secondary hypertension ga ten ma na sa ni na pheochromocytoma ni ya yamina cone syndrome ni ya aldosterone high ga ya ichik kidney ne nga tsati ge ji ut block ya ge na renovascular disease ut ki pressure high ta ut onu na je rai chog nam ta देश नंबर सी ने ना उन्होंने मांसो दी गतं स्नैक्स नां क्यों जंक फूड नां मांसो के शेचित मांसो ने तंगरा रंगारी तोंपले दी तक क्लास टेन बुचुना रंग प्रेशर हाई शॉंग एन गतं उसो ए तक तुमने खली वंग शॉम नहीं लो दी रंग डायलिसिस या कन शॉंग लंग एम सी ने प्रेशर हाई नोम में बिशे तो प्रेशर हाई ची की बिशे किडनी थी क्यों रसू नोम में तो ना दा चित ना ककदम चित गतं सदां खेदां चित ना उन्ना या हिंग्या या प्रेशर चिक चिक या तो एन मन का मनसे इचिक पेशा चे कंट्रोल या नीना उत्की लक्ष्य सिगाम बनो समतंगी
1: ले सोला किमजन थी तंग तंग जातं खेतां मुर्गो चिके नेता तो डॉक्टर सबे ना नांदो तो यिन गतं तं नालंग निंग कुंजे तो तब्जे ठेंग सुम जोतं बोल ता इचे स्पेशल का क्यंचो तब्जे जाइन नक सीजी रोड नम
0: ना दा चे तंग तं स्टडीज का रिसर्च या पुले ते पुले सीधी गे दुनिया ना मी सामान शो सकन चित पेशा इंजी मिंजी हाई शोंग लंगे दुन ये दम दा
1: ले सो
0: तंग आदा साथी घोटी सागोसुन ये ना W Health Organization की साजित तब पेशेंट नेकन मी थी शे 1500 मिलीग्राम ये दम है चिकतों जल्ला मिलीग्राम नियम शो प्लांटिक उम्तिंद रे सादा बनुम ये दम तंग आदा पेशेंट मनुन जकन शे 2300 मिलीग्राम ले मांसो सादा बनुम ये दम दा साजिके हाइपरटेंशन ने ना साजित न्यूज़ चालांगे ने ना पेशेंट न्यूज़ गई दम ये उत स्टडीज का तोम दा देश नो इंडिकेट के ना डायट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन ये दम सतान के दान दी चेंज गुर्चे या प्रेशर जो न्यूज या में जी का गतन शतान जे खदान से गतन का सीधी ने ना मांसो दी नट्स ने ना गतन नट्स ना उतना मांसो दी से फ्रूरा ना मांसो से इच फाइबर डाइट ने दम द फाइबर डाइट का रफ एज उतना मांसो से लो फैट डाइट द फैट्स द नुम मार उम्दिन जे न्यूजो बाचित उतना शनान खने हालिम दी मॉडरेट का शेगो सुन ये दुमे दा तंग आदम छांग तोंग का मीठी ये ना उत्ये मॉडरेट का थोंगो सुन ये द मॉडरेट ये ना डॉक्टर ची का छांग ये कंजित न्यूशो यागो सुन ये दुमे ता छांग मोटों का नी ना तो डॉक्टर राई में मोटों ना डॉक्टर राम ची दुमे थोंग का नी ना न्यूशो यागो सुन उत्ये का तक आदम एक्सरसाइज निये कंजित हालिम दी वॉक ला या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज निये दुमे दा जिम में ने हालिम दी ब्रिस्क वॉकिंग रनिंग उमदिन लाए एक्सरसाइज याना उत्किए गतं लुका अमिक्स चापुल गतं से फंदो दु नि दमे
1: लेसो हाई प्रेशर दिखो ने ने चिंग गतं डॉक्टर सबेला नंग गतं स्ट्रोक ने गया चिक हम बता लंग ते

0: हाई प्रेशर तो नो ने बुजु बुटु बाची हाई प्रेशर ता पे तंग मिल गयो के
1: मिल गयो के नो मुन्ये दुमे ता स्टडीज का टेबल ओ गया ते ते दुनी ना मांजो डिप्रेशन ने का नाम बिरिक यू ना ये कमन ना ये प्रेशर हाई रे के ना रोड मे
0: ले सोला ता ता डॉक्टर सबिन ना नंग सिंदरे ता छंग जो चिकना दा ता लिपो नो तो चिले चिक मन प्रोडक्ट ये दे मन छंग जो के गा ता नेट से का इन नो तो चिरा इंपो पेन दा जो हाइपरटेंशन का इन ये छंग जो के गा ता से तो निंग चिक नो तो मा तो लजो जे फनो मुनो मु छंग जो के ता प्रेशर का ने यो नो तो ना
1: तो मॉडरेट ने ना छत्ती छम्मा का देना तो प्रेशर हाई ना गई मुद ना ने तो भक्ति बिना से लिवर नजर नहीं होए ने तो हम थोड़ा मोजो को इन ना तो लिवर नजर उन दिन सिगां दे मुन छां जी की ना तो जी की ना तो मुन ने ना तो बिना मॉडरेट का थों जो को ने तुम में मां से तो मतों ने तो डॉक्टर रन से तुम दा
0: प्लीज तो प्रेशर यू तो खा हुए मिनो मु में खा हुए मिनो तो बिना डॉक्टर दिया सुख से बिना खटन दे बिना कुतन दे लो
1: तो प्रेशर ने ना का नहीं रो दो में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ने ना इचिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ने उत निं गुदान चिक ला शतम द निं कॉन्ट्रैक्ट या पुले निं शेट गु पुले बिना प्रेशर थी जों दम इचिक निं रिलैक्स के पुले प्रेशर न्यू शो दी गई दम तो उत ने का नॉर्मल का गो ति ने ना त सिस्टोलिक प्रेशर ने निं गु पुले शे चो गु पुले उत प्रेशर चे 120 वाच का गो सुन ने दम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जे 120 ने ना ज्यादा खाली में इचिक डायस्टोलिक प्रेशर जे निं रिलैक्स के पुले प्रेशर दी गई दी जों दम ने ना गेजु वाका इचिक होम बीपी मॉनिटरिंग ने दमदा खेमा ये या मशीन दी के चेक या में थे का इचिक तो नकथी एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग या बीपी मशीन नक सोई तो रोदम दत 24 आवर्स प्लान थी पूरा जारी है किस यार गे दो मार गे दो ते में थी रोदम तो उत सुनकर चे सीटी ने दम ते ना ने ना गदा स्टेटस नेलब ने में छे या डॉक्टर ना चेक या दो में उत मानु ने या देश नो कर गाता मशीन दी रोद में बैठे सुत या उत यूज या चुकुम लेकिन यूज यादा तरीका थी रोद में गया थी यूज या कुछ ना उत मशीन चित ना था चित मशीन डॉक्टर बात चित कुछ तो साइंस ने ना वैलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने तुम यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन अमेरिकन आई ते बिरी उत मशीन ना का बाजार का ना का नौ चित बिरी टेस्ट या उत मशीन चित या ना नाम दा रोको ने बिरी शतु चित उत मशीन चित यूज या ना नाम दा चित चित गिम दा खेमा ये चेक या चुको नुम खेमा गया चेक या कुछ ना ना लंग चप नहीं लूती चेक या नोप चप नहीं लूती चेक या भूत चिका कम थी लूती गैप थी नहीं कुछ रही गिम गेप ने ना कम थी शुक जब नहीं लूते चेक जा को सुमे या तंग नी चे घंटा फिशर ना चे बिना रिलैक्स या सु छिन रहते है ना छिन जे खाली आया उच्च का जाए ने ना कॉफी उम्ते मिजे या कैफे ने जो ड्रिंक सिकां दी मिजे या चेक दी का रिलैक्स या सु या इचिक टेबल से का लानी या जो मशीन चित निंग रे का होंगो सुन ये तो मैं तकता चित निंग का हाइट का यूर में नहीं हुआ या उस यादां चिके दी तकता दिखली ना होम बीपी मॉनिटरिंग या को सुन ये तुम दा होम मॉनिटरिंग के सिर्फ हम तो ना भक्ति मी रेकन चित भी मन का रहना प्रेशर नॉर्मल थी तो खेमा गए ना हाई थी तो उच्चे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन ये तुम डॉक्टर फेक पुले प्रेशर हाई की हुई व्हाइट कोट हाइपरटेंशन थी भक्ति मेन का रहे या भी नॉर्मल थी तो में इचिक भी खेमा दी गई है चेक दी या ना बिग बीपी हाई तो उसका मास्क हाइपरटेंशन तब हाइपरटेंशन ना तो फिर सुबह चुकन थी रहे तुम्हें मास्क हाइपरटेंशन इचिक नहीं है तुम्हें उत्कन को पुले तो खेमा ये मॉनिटरिंग या गोसु खादु से तुम दंगा था यादा चीते गोसुम

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आइए पहले सुनते हैं एक जरूरी सूचना। पुलिस अधीक्षक तवांग के कार्यालय से प्राप्त

यातायात सलाह अनुसार तवांग जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और बाजार क्षेत्र में सड़क जाम और पर्यटक वाहनों, यात्रियों बसों, स्थानीय टैक्सियों और बोलेरो पिकअप की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात के सुचारू प्रबंध के लिए तवांग टाउनशिप क्षेत्र में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करनी है तो यातायात नियम कुछ इस प्रकार की है। बाजार क्षेत्र में पर्यटक वाहनों, बसों और पर्यटक टैक्सियों जैसे फोर्स ट्रेवलर या किसी भी अन्य बहुउद्देश्य वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। बाजार के लिए यात्रियों को लाने ले जाने के कार्य केवल निर्धारित स्थानों से ही किया जाएगा। बाजार क्षेत्र में स्थानीय टैक्सियों और बोलेरो पिकअप्स की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। सभी सार्वजनिक बारी और निजी वाहनों को बाजार क्षेत्र में पार्क न करने की सलाह दी जाती है। डबल पार्किंग नेहरू मार्केट, ओल्ड मार्केट, न्यू मार्केट और डाउनटाउन मार्केट क्षेत्र जैसे बाजार क्षेत्रों में डबल पार्किंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है और उल्लंघनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बाजार क्षेत्र में लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियां इस प्रकार होगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति होगी। सुबह 7 बजे के बाद भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक्स और डंपर्स को तवांग टाउनशिप क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सभी पर्यटक वाहनों को जनरल परेड ग्राउंड में निर्धारित पार्किंग स्थलों पर या वॉक थ्रू मार्केट तवांग में सुशुल्क पार्किंग क्षेत्र में पार्क करनी होगी। स्थानीय टैक्सियां अपने वाहन होटल गोरीचंद के पीछे स्थित निर्दिष्ट टैक्सी स्टैंड जो स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के बाजार के पास है वही पार्किंग करनी होगी। तवांग के आम नागरिकों को अपरुत सलाह का सख्त से पालन करने चाहिए। तवांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, यातायात प्रभारी और सभी यातायात पुलिस कर्मियों को इस सलाह का सख्त से पालन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार उचित जुर्माना लगाया जाएगा। सूचना समाप्त हुआ। श्रोतों, कार्यक्रम जरोका के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा अनिगेन्दन संग और साथियों से ग्यावे जप्तन और बर्ज लमसिल। तत्पश्चात स्वर्गीय लामा लुंगतन नर्वो और साथियों से चंडेजिक लामित नेंजुर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7 बजे तथा शाम 7:05 पर हिंदी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनिएगा साप्ताहिक ग्रामीण कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। आज शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फौजी फाइव के लिए फिल्म संगीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर। तत्पश्चात 7:50 पर सुनिएगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत फिल्म 83 से। आज रात्रि 8 बजे का समय रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: Lanyinang stada lungchinkang tawang nomnyi ngodun chindun lirima naji ani kinden sangmusi kristunu kiwi shabden nin parche lamsil tonu nin jik shuji lama lungdan nubu shakansi kristunu chendisi lamin nirjuk choga tonu san nambur Lanyinang odekwa lungchinkang tawang tishnubdik monpag lirimba na chazang tudur Lanyi changba nubduksuza nisongdur Lanyinang tawo shuji na hindi ka sigyu nin shuji inji ka sigyu lungchinkang telika shu san nangsa
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी

0: हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट विट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण

0: राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Following the talks, both leaders signed 11 agreements to expand the bilateral cooperation. The agreements were inked in areas of labour migration, defence, digital technologies, higher education and quantum communication. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Modi said, "Elevation of relations to the status of a comprehensive partnership symbolizes shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: Mr. Modi also conveyed his appreciation to Mr. Fico for the cooperation Slovakia extended in finalizing the India-EU Free Trade Agreement. In his remarks, PM Fico hailed India-EU FTA, describing it as one of the most ambitious trade pacts ever signed. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight.

0: फसलें कहते हैं, ये जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, और जब हम पॉली हाउस में अगर बनाए नर्सरी तैयार करें तो वो शायद और नाजुक हो जाते हैं, तो बाहर जब ट्रांसप्लांट करने के लिए लेकर आते हैं तब किस तरह की ध्यान रखनी चाहिए?
1: कैसे हम ट्रांसप्लांटिंग अच्छे से करें ताकि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, इसके पहले हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, इनकी प्रमुख किस्में क्या है। जो वैरायटीज तो बहुत सारी हैं, कुछ सर गवर्नमेंट के रिसेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी डेवलप की गई हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी। तो ये तवांग के कंडीशन में अलग अलग सब्जियों की, जैसे कैबेज पत्ता गोभी की किस्में ही है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा विकसित है। गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम, ये पत्ता गोभी कैबेज की प्रमुख महत्वपूर्ण किस्में हैं जो कि ज्यादा उत्पादन देती हैं। इसी तरह फूल गोभी कॉलीफ्लावर, इसमें अगेती किस्में हैं, जैसे कि जिनको यहाँ हम जनवरी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दिसंबर टू जनवरी, कुछ मेन सीजन की किस्में हैं, कुछ लेट होने वाली किस्में हैं। तो फूल गोभी की अर्ली किस्में जो अगेती किस्में हैं, पूसा मेघना, पूसा कार्तिकी और पूसा दीपावली, ये अर्ली अगेती किस्में हैं, आगे इसको लगा सकते हैं। और मेन सीजन की किस्में हैं जो पूसा शरद है, पूसा अगहनी है, और थोड़ा देरी से होने वाली लेट वैरायटी जो फूल गोभी की है, इसमें पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, ये हैं। सिमिलरली ब्रोकली, यहाँ ब्रोकली भी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो ब्रोकली की किस्में है पूसा ब्रोकली KTS1, दूसरा है ग्रीन हेड और रॉयल ग्रीन, ये तीन किस्में ब्रोकली की बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ गया हम नर्सरी के बाद कैसे इनका रोपण करें। तो नर्सरी हमने लगा लिया, बीच बीच में हमको नर्सरी में कुछ खरपतवार जो वीड्स होते हैं उनका देखभाल करना चाहिए, बीच बीच में हमको पानी देना चाहिए ताकि हमारा नर्सरी अच्छे से हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ गर्म जगह है वहाँ गोभी वर्गी नर्सरी जो है 25 से 26 दिन में तैयार होती है, लेकिन तवांग चूंकि ठंडा जगह है, यहाँ हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि 45 दिन के आसपास में नर्सरी तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है, जमाव ही 15 से 18 दिन में यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, बीज का जमाव हो रहा है। इसके बाद हमको 4 से 5 पत्ते वाले पौधों को ही सिलेक्ट करना चाहिए मेन खेत में रोपने के लिए, लगाने के लिए। प्लस उसमें देखना चाहिए अगर कोई कमजोर पौधा है तो उसको अवॉइड करें, हेल्दी पौधों को लें। और जब हम नर्सरी से पौधों को उखाड़ना है उसके एक दिन पहले हमको उसमें पानी भर देना है। पानी भरने से क्या होगा कि उनकी जो जड़ें हैं ना, रूट जोन थोड़ा नरम हो जाएगा, तो जब हम पौधे उखाड़ेंगे मेन खेत में ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनका जो रूट सिस्टम है जड़, वो टूटेगा नहीं, अच्छे से हमारा वो पौधे लगाने से लग जाएंगे, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। फिर प्लांटिंग डिस्टेंस की बात आती है कि कितना दूरी में हमको इनका रोपाई करना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए। कैबेज देखिए 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कैबेज के लिए, पत्ता गोभी के लिए पर्याप्त है। कॉलीफ्लावर में कुछ अगेती किस्में हमने बताया, कुछ मेन किस्में है, तो जो अगेती किस्में है अर्ली, उनका चूंकि प्लांट साइज छोटा होता है, तो उनके लिए 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर रो टू रो और 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, जो मेन क्रॉप है इसको 60x60 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। ब्रोकली के लिए भी 60 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर, इतना स्पेसिंग करने से उनका ग्रोथ वगैरह अच्छा होता है। ज्यादा दूर दूर कर देंगे तो हमको खरपतवार वीड्स ज्यादा उगेंगे, ज्यादा पास पास कर देंगे तो उनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा, तो भी हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
0: और न्यूट्रिएंट जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं और उसके प्रबंधन के लिए विशेष रूप से क्या करना चाहिए, और जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं ना, तो उसकी क्या भूमिका रहती है?
1: देखिए, चूंकि हम लोग थोड़ा सा पहले भी हिंट जिक्र किए थे कि यहाँ ऑर्गेनिक है, हम किसान जैसे केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया DAP के प्रयोग से थोड़ा हिचकते हैं लोग, वैसे यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पर्याप्त है, जीवांश की मात्रा पर्याप्त है, तो हमको फार्म यार्ड मैन्योर मतलब की गोबर की खाद हो या हमारा जो भी खरपतवार है वीड्स है उनको अच्छे से सड़ा करके हम उनको तैयार करके इस खाद को गोबर की खाद को एक थंब रूल है कि 1 kg पर स्क्वायर मीटर इस दर से हम अपने पॉली हाउस में या मेन फील्ड में इनका फार्मेड मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमको रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज है, इसके अलावा हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, PSB मतलब फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका कल्चर आता है। तो क्या करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है, PSB जो है फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है, इन सब का क्या है कि लिक्विड फॉर्म आता है, तो 1 लीटर पर एकड़ की दर से, या अगर हम ऐसे कहें कि स्प्रे करना है मान लीजिए प्लांट पर, तो इनका जो है कि 1 ml पर लीटर वाटर, इस डोज में इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल जो गोभी वर्गी फसलें हैं उनको लगाने के 20 से 25 दिन बाद एक स्प्रे कर सकते हैं, दूसरा स्प्रे 40 दिन बाद कर सकते हैं, 40 से 45 दिन बाद, तो दो स्प्रे कर देंगे। प्लस शुरुआत में फार्म

0: मैन्योर लगा देंगे तो इससे हमारा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी गोभी वर्गीय फसलों को। एक और आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर। गोभी वर्गीय फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे फूल गोभी में स्पेशली नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी एकदम पतली रस्सी के समान हो जाती है, उनका जो फूल है अच्छे से नहीं बनता है। इसके अलावा फूल गोभी और ब्रोकली में एक और समस्या आती है, बोरान की कमी से जो हमारा फूल है टेक्निकली कर्ड बोलते हैं फटने लगता है। तो ये विप्टेल वगैरह ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है पाउडर फॉर्म में, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं। इनका क्या है कि 0.1% सॉल्यूशन, मतलब 0.1% घोल। किसानों को आसान भाषा में समझाने कि मतलब 100 लीटर पानी में 100 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर घोल के आप अपने गोभी वर्गीय फसलों पर इनका छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। ऐसे ही टमाटर में है, टमाटर में भी फल फटने लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की कमी से। बहुत सारे सब्जियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, वो बताता है कि सब्जी बता रही है, प्लांट्स बता रहे हैं कि हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इनका कब छिड़काव कर देंगे, 2 छिड़काव काफी है। गोभी वर्गीय फसलों में भी मान लीजिए 30 से 35 दिन के बाद एक छिड़काव कर दीजिए, एक 15 दिन के बाद अगला छिड़काव कर दीजिए, 45 दिन बाद एक, 30 दिन बाद एक, 45 दिन बाद। तो इस प्रकार से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की कमी को भी पूरा कर सकते हैं।
1: जी, क्योंकि मैंने देखे कि फूलगोभी को ही ले तो फूलगोभी के जो पत्ते होते हैं शुरुआत में वो तो बहुत सुंदर तरीके से खिलते हैं, पर जब फूल लगने की बात आते हैं तो उसमें शायद पोषक जो तत्व है इसकी कमी की वजह से बीच में या तो फिर बहुत छोटे फूल खिलते हैं या फिर फूलगोभी के फूल के बीच में से और एक अलग से
0: वही वही वही उसको इसलिए होते हैं। डिजीज नहीं, डिसऑर्डर, न्यूट्रिएंट्स की कमी से कुछ स्पेसिफिक अलग प्रकार की रचना बन जाती है, तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। वो नाइट्रोजन की कमी से होता है ऐसा फूलगोभी में स्पेशली।
1: तो पोषक तत्व की जो जितने भी तरीके हैं इसे अच्छी तरह से अपनाए तो फिर फूलगोभी में जो ये समस्या आती है
0: वैसे इनका मिलेंगे वृद्धि और विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और हमको अच्छी यील्ड, अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: ये तो रही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को लेकर, तो वीड कंट्रोल जो खरपतवार है इसके मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए?
0: खरपतवार जो मतलब वीड्स किसे कहते हैं, जो हम मेन फसल लगाए हैं उनके अलावा कोई भी पौधा हमारे खेत में या हमारे पॉली हाउस में उगे वो वीड्स है, वो खरपतवार है, वो अनावश्यक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम मेन फसल लगाने के बाद हमको हाथ से ही मैनुअल वीडिंग करनी चाहिए, खरपतवार की निराई गुड़ाई हाथ से एक बार लगाने के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, एक 10 दिन बाद फिर दूसरी निराई गुड़ाई वीडिंग मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं। हम केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं लेकिन वो आवश्यक नहीं है, केमिकल का कम से कम प्रयोग करना खेती के लिए और मिट्टी के लिए और मानव ह्यूमन हेल्थ सबके लिए अच्छा है।
1: तो आपने यहाँ पर आने के बाद गाँव में जाकर बहुत सारे किसानों के जो तरीके होते हैं खेत में काम करने की, सब्जियां उगाने की, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हमारे पारंपरिक तरीके होते हैं तो इसी को लेकर काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है वैज्ञानिक जो तरीके हैं इसे अपनानी चाहिए कि नहीं, और वैज्ञानिक तरीके को अपनानी चाहिए तो इसकी क्या क्या फायदे हैं?
0: समय के साथ समाज बदल रहा है और समाज के साथ साथ हमारे बहुत से खेती करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर हम पारंपरिक तरीके से करते रहेंगे तो हमको उपज कम प्राप्त हो गई, उपज प्रोडक्शन कम प्राप्त होगा, चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो, दाल वाली फसल हो, तेल वाली फसल हो, दलहन तिलहन बोलते हैं, किसी को भी। सर अभी हम लोग सब्जी में डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे कि पुरानी सब्जी की किस्में हैं उनका पैदावार कम होता है, नई नई किस्में वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं उनको, उन पर रिसर्च कर करके, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारा उसमें और क्वालिटी वैरायटी में ट्रैट्स डेवलप करके उन वैरायटीज को रिलीज की जा रही है, जैसे कि रोग रोधी किस्में, कीट रोधी किस्में, और ज्यादा ठंडा में भी सरवाइव करने वाले किस्में, ज्यादा गर्मी है उसमें सरवाइव करने वाले किस्में, कोई साल्ट अफेक्टेड एरिया है तो साल्ट टॉलरेंट किस्में। हमको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही पड़ेगा ताकि हमारी लागत तभी कम हो पाएगी। पारंपरिक तरीके से हम करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, खेती की लागत भी बढ़ेगी, तो हमको मुनाफा कम होगा, किसान घाटे में रहेगा। तो किसानों के ओवरऑल फायदे के लिए हमारे इतना ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है उसको उसका पेट भरने के लिए, चाहे वो अनाज के रूप में हो, तेल के रूप में हो, दाल के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो, हमको नई वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक खोजों को अपने खेती में अपनाना ही पड़ेगा ताकि हम अधिकतम प्रोडक्शन के साथ साथ हम अधिकतम आर्थिक रूप से किसानों को लाभ भी दे सकें।
1: किसी के पास एक ही किचन गार्डन या एक ही बगन होते हैं, वो एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? मिट्टी को कितने समय के लिए खाली छोड़नी चाहिए?
0: मिट्टी को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्यों हम मिट्टी को खाली क्यों छोड़ते हैं? ताकि उसमें कुछ समय तक मिट्टी खाली

0: खाली रहेगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स अपटेक पौधे नहीं करेंगे, मिट्टी का हेल्थ अच्छा रहेगा। एक चीज ये है, न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर तो हमारे पास तमाम ऑप्शन है। हम मिट्टी को ऑर्गेनिक तरीके से उनका इनरिच करके हम उसमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर काउडंग मैन्योर को सड़ा के वर्मी कम्पोस्टिंग करके मिट्टी को हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। साल भर हम अपना कुछ न कुछ अपना किचन गार्डन से उगा सकते हैं। उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है क्रॉप रोटेशन करना। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, सपोज इस साल हम गोभी लगाए इस समय, तो नेक्स्ट ईयर इस समय में हम गोभी नहीं लगा के टमाटर लगा लें, आलू लगा लें। क्या होगा क्रॉप रोटेशन से कि जैसे कि कोई क्रॉप ज्यादा न्यूट्रिएंट लेती है तो नेक्स्ट ईयर हमको उस फील्ड में मिट्टी से कम न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल को लगाना चाहिए। मान लीजिए एक ही क्रॉप लगातार लगाने से उसमें कुछ बीमारियां लग रही है, उस कीड़े लग रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर वो मिट्टी में कई सालों तक रह जाते हैं। तो हम क्रॉप रोटेशन करने से अगले साल फिर वो कीड़े को वो खाना नहीं मिल पाता, वो फसल नहीं मिल पाता है, तो उनका अटैक ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन से हमारा मिट्टी का हेल्थ भी हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट के बाद कम न्यूट्रिएंट वाली फसल ले सकते हैं।
1: भारत सरकार द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड नाम का एक योजना जारी किया गया था, तो उससे किसानों को क्या फायदे होते हैं?
0: जी, सोयल हेल्थ कार्ड जो है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, अभी भी चल रही है कुछ जिलों में। इसमें क्या है कि मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच सॉइल लैब में की जाती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, फास्फोरस का मात्रा कितना है, पोटाश का मात्रा कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह की भी मात्रा कितना है। तो किसान के खेत की मिट्टी जब लैब में जाती है उसका एनालिसिस होता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड पर लिख दिया जाता है कि ये इतना इतना अमाउंट आप मिट्टी में है और आपको कितना एडिशनल फर्टिलाइजर देना है। वो फर्टिलाइजर से दे सकते हैं आप, चाहे मैन्योर से दे सकते हैं। तो इससे किसान को अपने खेत के वास्तविक स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, उसके अनुसार उस प्रकार की फसल उगाता है, जिससे कि अनावश्यक आर्थिक लाभ आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है किसान को, साथ साथ मिट्टी का हेल्थ भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और मिट्टी का हेल्थ पर ही हमारा फ्यूचर का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है।
1: तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, हमारे ये जो आज के कार्यक्रम है इसकी समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो हमें हमारी ये चर्चा यहीं पर समाप्त करनी होंगे। तो आपने आज अपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
2: श्रोता, भी आपने सुना केवीके तवांग के एसएमएस हॉर्टिकल्चर से डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ कोल क्रॉप्स विषय पर एक भेंटवार्ता, उनसे भेंट करता थे दोर्जी टोलमा। श्रोता, इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अभी पर समाप्त हुआ।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी वायु क्लिप फिल्म संगीत।

फौजी वायुओं के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा ही सुनते हैं फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, बजरंगी बाजान फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोतों, कार्यक्रम का अंतिम नगमा कौमदिलिया एफएम रॉक स्टार से मोहित चौहान की आवाज में शफरसना इरशाद कामिल के है तथा धुन एआर रहमान का।

श्रोता मोहित चौहान के गाय फिल्म रॉक स्टार के सी नगमे के साथ ही कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ताओं को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के समर्थन के लिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस समझौते को शीघ्र लागू करने की दिशा में कार्य करेंगे, जिससे दोनों देशों के उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ सुनिश्चित होगा। आज ब्रिस्तावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि FTA का सफल निष्कर्ष भारत यूरोपीय संघ आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के निकट गोंगू में अरुणाचल प्रदेश बांस एवं बेत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बांस राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है, जो सतत आर्थिक विकास, उद्यमिता, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवस्थापित केंद्र अरुणाचल प्रदेश के विशाल बांस संबंधों को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही स्थानीय युवाओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों के लिए आजीविका के अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र की स्थापना में योगदान देने वाले अरुणाचल प्रदेश बांस संसाधन एवं विकास एजेंसी, वन विभाग तथा सभी संबंधित हितधारकों के प्रयासों की भी सराहना की।

0: नायक चावजिग्नू नामचुम ने आज नामसाई में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए स्थापित किए जा रहे औद्योगिक पार्क स्थल का दौरा कर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विधायक ने कहा है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री पेमा खांडू के दूरदर्शी नेतृत्व का एवं उप मुख्यमंत्री चौहान मेन के समर्पित प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही किसानों और उद्यमियों के लिए मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है। एक अन्य कार्यक्रम में श्री नामचुम ने नामसाई नगर में मंडल अध्यक्षों और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रगति पथ यात्रा में भी भाग लिया। ये कार्यक्रम देश भर में मनाए जा रहे जनसेवा के 12 वर्ष समारोह का हिस्सा था। फोर्थ सब जूनियर राज्य रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज ईटानगर स्थित खेलो इंडिया इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कैपिटल कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन एसोसिएशन CCBA द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ASBA के तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के 21 जिलों के कुल 174 खिलाड़ी 11 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान 276 मैच खेले जाएंगे जो आगामी 17 जून तक जारी रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश के दो कलाकार रूमी तक एवं डोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोनों कलाकारों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि रूमी तक को लोक रंगमंच एवं पारंपरिक लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं डोमिन कारबाक को अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, शियोमी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तवांग जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR चरण 3 अभियान आज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसके तहत बूथ स्तरीय अधिकारियों BLOS ने सटीक, समावेशी और अद्यतन मतदान सूची सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन कार्य आरंभ किया। BLO द्वारा विभिन्न गांवों के बुजुर्गों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ प्रतिनिधित्व करने वाले बूथ स्तरीय एजेंट्स BLS के साथ बैठकें भी आयोजित की। इन बैठकों में समन्वय को मजबूत करने, जागरूकता बढ़ाने और मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिली। और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग द्वारा ट्रेनर्स को रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के उद्देश्य से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT पांगिन में आज फिनिशिंग कोर्स कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ हुआ। 19 जून 2026 तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर शामिल किया गया है, जिनमें सरकारी योजनाएं, डिजिटल साक्षरता, रिज्यूमे लेखन एवं साक्षरता की तैयारी, श्रम एवं रोजगार संबंधी लाभ तथा उच्च शिक्षा के अवसर शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय नारंग कोयांग। Prime Minister Narendra Modi expressed gratitude to Slovak Prime Minister Robert Fico for Slovakia's support in advancing negotiations on the India-EU free trade agreement, saying both sides would work towards its early implementation to benefit industries, startups and traders in both countries. Addressing a joint press address along with the Slovak Prime Minister in Bratislava today, Prime Minister Modi said a successful conclusion of the FTA would mark a significant milestone in India-EU economic relations and open new opportunities for bilateral economic engagement between India and Slovakia. Highlighting the growing role of technology in the partnership, the Prime Minister said digital technology will be a key pillar of future cooperation between the two countries. He noted that a memorandum of understanding signed on digital technology would unlock new possibilities in digital public infrastructure and innovation-led collaboration. Chief Minister Pema Khandu today inaugurated the Arunachal Pradesh Bamboo and Cane Technology Centre at Gungu near Itanagar and described bamboo as one of the state's greatest natural strengths capable of driving sustainable economic growth, entrepreneurship, employment generation and environmental conservation. Speaking on the occasion, the Chief Minister said the newly inaugurated centre would play a pivotal role in transforming

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय शाम के 7:55 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं एक देशभक्ति गीत फिल्म It did three see?

यशोदा भी आपने सुना एक देशभक्ति गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म 83 से। इस गीत के गीतकार थे कौसर मुनीर तथा संगीतकार थे प्रीतम। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है दादा बाबू रोड गिरिदत्त झारखंड से। आफसफ है मोहम्मद यसीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज बाबू आहत, मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और संध्या। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म राम लखन से। मन्नर उदास और अनुराधा पोडवाल की युगल आवाजों में इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आशा रेडियो लिसनर एसोसिएशन मीर नगर उमरखंड महाराष्ट्र से आप सब है अभिजीत गोविंदकर, मिसेस सरिता गोविंदकर, परिणीता सिद्धार्थ गोविंदकर और अर्जुन गोविंदकर।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म से मन्नर उदास कविता कृष्णमूर्ति सुखवेंद्र और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश की है शोभापुर बाईपास मीरूट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने।

0: श्रोतों, कार्यक्रम का अगला फरमाइश आइए सुनते हैं निकाह फमजर महेंद्र कपूर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसन कमल ने तथा संगीत दिया है रवि ने। इस गीत की फरमाइश की है मंडलिंग तवांग से तिनजिन टोलकर श्रीरेपा ने।
1: क्योंकि

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है मोक्तो गांव के दुर्जीत सिंह के संग गिंदन पेमा फुरपा डेमा दावा और दावा चटुन से फिल्म सरगम से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल आवाजों में गीत आनंद बख्शी के है तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोता भी माना ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपके फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रूमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन का मुकाबला काबो वर्डर से होगा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत में नीदरलैंड्स की टीम जापान के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स की ओर से एक के बाद एक अटैक किए गए, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने कई शानदार बचाव किए। मैच के 50वें मिनट में रयान ग्रोवेनबर्ग की फ्री किक पर नीदरलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं मुकाबले के 57वें मिनट में नकामुरा ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। 64वें मिनट में समरविल ने शानदार कर्लिंग शॉट

0: आते हुए जापान के गोलकीपर को छकाया और नीदरलैंड्स को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। मुकाबले के 88वें मिनट में जापान को कॉर्नर मिल गया। कोकी ओगावा शॉट दाइची कामदा पर पहुंचा और उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके साथ ही जापान ने स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं लग सका और दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा।
1: It's Tito, it's Ogawa, it's Bedlam.
0: वही मोंटेसरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्वीडन की ओर से यासीन अयारी, अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर योरकेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में ही स्वीडन की ओर से यासीन अंसारी ने पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर इसाक ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि ट्यूनिशिया ने भी वापसी की कोशिश की और उमर रेकिक ने हैनिबल मेजबरी के क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जबरदस्त खेल दिखाया और मुकाबले को एक तरफा कर दिया। योरकेस ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद मैटिया स्वानबर्ग ने स्वीडन के लिए चौथा गोल और यासीन अयारी ने आखिरी गोल करके टीम को 5-1 से जीत दिलाई। जबकि 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने फीफा विश्व कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। जर्मनी ने ई ग्रुप के पहले मैच में कुरासाओ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी की ओर से फेलिक्स नेमचा, निको, काई हेवर्ट्स, जमाल मुसियाला, नेथेनियल ब्राउन और डेनिस उन्दाव ने गोल किए। कुरासाओ के लिए लिवानो कोमेंसिया ने शानदार गोल कर टीम के लिए इतिहास रच दिया। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कुरासाओ क्षेत्र और आबादी दोनों में ही अब तक सबसे छोटा देश है जिसने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।

0: कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां भारत ने शानदार अंदाज में प्रतियोगिता का आगाज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पुल ए के मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। सुनते हैं रोमांचक मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम की ओर से मुकाबले में दीपिका ने 2, नवनीत कौर ने 1 गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एशले सेसा ने 4th मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज 3 मिनट बाद ही अपनी बढ़त 2 गुनी कर ली। मेडलिन जिमर ने 7th मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया। 2 गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने धीरे धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरी क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाई जब ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने 17th मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24th मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफ टाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28th मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई, जो मैच के अंत तक कायम रही। वहीं दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बाकी 2 क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल होने नहीं दिया। भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद भारत 3 पॉइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अब अगला मुकाबला 16 जून को जापान से होगा, जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैस्ट।
0: और अब बात बॉक्स

0: बॉक्सिंग की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रां प्री उस्तीनाद लाबिम प्रतियोगिता के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17 से 21 जून के बीच खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: इस 12 सदस्यीय टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों और कॉम्बिनेशन को परखने तथा यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है। ग्रैंड प्री उस्तीनाद लाबिम यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है, जो 5 दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला ये इवेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा। इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और प्रीति पवार 54 किलोग्राम महिला टीम की अगुवाई करेंगी, जिसमें साक्षी 51 किलोग्राम, प्रिया 60 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। पुरुष टीम में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाज 60, आदित्य प्रताप 65, सुमित 70, अंकुश 80, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम वर्ग और नरेंद्र 90 से अधिक किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
0: भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि वे 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक की प्रविष्टियों में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है, जबकि 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रविवार को घोषित भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम सशर्त शामिल किया गया है। उन्हें इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना होगा। अगर वह ग्लासगो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के 3 भाला फेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 9 के जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकोर और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रोमेश तरंगा पथिरागे भाग लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आइए सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये रिपोर्ट।
3: बर्मिंघम के एच बेस्टन में भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंद में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत को मुश्किल परिस्थिति से निकाला। मंधाना 44 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद में 36 रन की सधी हुई पारी खेली। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने 21 गेंद में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दीप्ति ने नाबाद 12 और ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ 34 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। 171 रन के लक्ष्य के जवाब में मुनीबा अली और गुल फिरोजा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही और सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। एक विकेट शेफाली शर्मा ने अपने नाम किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुकाबले में प्रोसेस पर ध्यान दिया।
4: आई थिंक जब यंग दीप्ति से अभी सीनियर दीप्ति में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक प्रेजर कंडीशंस एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स। जहां से मैंने खत्म किया था आई थिंक वहां से ही शुरू किया है। सो अच्छा लग रहा है, बस कि अपने जो प्रोसेस है उस पे फोकस कर रही हूँ, वही चीज

0: प्रैक्टिस में करती हूँ वही मैच में अप्लाई कर रही हूँ. दोस थिंग्स हेल्प मी. और बस यही है कि इसे आगे जाना है, रुकना नहीं है और डे बाय डे अच्छा करना है.
1: विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा कि मैच में अहम साझेदारी के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद जरूरी है.
2: स्टार्टिंग में जब मेरा चौका लगा पहला बॉल, तभी मेरा पता चला कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जब कट और ऐसा आ जाता है एक अच्छा शॉट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है. रनिंग बिटवीन द विकेट वो सब में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर चौका भी नहीं आ रहा, छक्का नहीं आ रहा है तो हम कैसे भागे, हम जितना पुश कर सकते हैं. आई थिंक वो हमें हेल्प किया गेम में रहने के लिए. जैसे 19 और 20 ओवर जैसे हमने बात किया कि अभी ऑल आउट जाना है, क्योंकि जितना स्कोर आएगा रन बोर्ड में उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए बॉलर्स के लिए हेल्प होगा.
1: इस जीत के साथ ही भारत ने महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. भारत 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड से खेलेगा. प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन.
3: उधर दाम्बुला में ट्राई नेशन एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में आज रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया. इस मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 265 रन पर सिमट गई. सूर्यांश ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली, लक्ष्य का पीछा करने उतरी. श्रीलंका की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना सकी. सदीरा समरविक्रमा ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 16 रन बनाए, जवाब में भारत 9 रन ही बना सकी. और अब बात एथलेटिक्स की. त्रिवेंद्रम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में कल भारत की पूजा ने महिलाओं के हाई जंप इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा. 19 वर्षीय पूजा ने 1.81 मीटर की ऊंचाई के साथ बेहतरीन जीत हासिल की. और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ. आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं. तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश

0: देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान

0: विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और

0: डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावना

0: बातें बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed a memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
0: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

0: 5-1 in their Group F match in Mexico earlier in the day. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Northeast, Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The Met Department has issued an orange colour warning for thunder squall conditions in West Rajasthan for tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, the Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim during the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labour migration, digital technology and defence. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. The French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
1: श्रोतों में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित न्यूज एट नाइन। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए श्रोतों, जाते जाते हम आपको कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दूं। कल दोपहर 3 बजे आप आनंद ले सकेंगे जुवेन गर्ग और अंगारा की आवाजों में चंद असमिया नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3:33 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा तंग पुख समा। कल शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की कविता। कल शाम 7:11 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म अनहरी से चंद हिंदी फिल्म नगमे। कल शाम 7:25 पर सुनेगा